0: नमस्ते अध्यापिका जी।
1: कैसे हैं आप लोग?
0: हम
1: हम
0: अच्छे
1: ठीक हैं।
0: हैं।
1: अच्छा, तो आज की कक्षा शुरू करें।
0: हाँ
1: चलिए, मैंने आपको क्या बताया? गौरैयों के बारे में बता रही थी, राइट?
0: हाँ
1: तो गौरैयों के पिताजी क्या करते हैं?
0: घर के बाहर भेज देते हैं।
1: रोज रोज उनका यही काम है ना, रोज रोज वो क्या करते हैं, गौरैयों के ऊपर लाठी से, या फिर प्रहार नहीं करते, मतलब लाठी से दुत्कारते हैं, सू सू बोलते हैं। तो गौरैया बाहर चली जाती है, मगर रात को
0: वापस आ जाते हैं।
1: क्यों, वो अपने घर में वापस आ रही हैं गौरैया, है ना? यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके आगे, पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वे भी तंग आ गए थे। ओके, अब पिताजी परेशान हो गए, कब तक मैं लाठी झुलाऊं? मगर पिताजी परेशान होने वाले व्यक्ति नहीं थे, मगर फिर भी अब वो परेशान हो गए। किससे परेशान हो गए?
0: गोरैया से।
1: गौरैयों से परेशान हो गए, पर आखिर वे भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई, तो वे कहने लगे कि वे गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वे फौरन बाहर से एक स्टूल उठा लाए। अब उन्हें इतना गुस्सा आया बच्चों पिताजी को, कि उन्होंने कहा, नहीं, अब तो या तो फिर गौरैया रहेगी इस घर में, या फिर मैं रहूंगा। उन्होंने क्या किया, घोंसले को तोड़ने की सोची, उसके घोंसले को खराब करने की सोची। किसके घोंसले को? गौरैयों
0: गौरैया
1: के
0: के
1: घोंसले को।
0: घोंसले।
1: और वे फौरन बाहर से एक स्टूल उठा लाए। ओके, देखो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो गौरैया कहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है? ठीक है,
0: हाँ
1: देखो कहाँ बैठी हुई है गौरैया। तो अब पिताजी ने क्या किया, गौरैयों को बाहर भगाने के लिए पिताजी ने एक स्टूल ले लिया। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था, उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। घोंसला तोड़ना कोई आसान काम होता है? नहीं, बनाना मुश्किल काम
0: मुश्किल
1: होता है,
0: लगता
1: तोड़ना बहुत आसान होता है। बच्चों, कोई भी चीज

0: उसको बनाना मतलब आपको उसमें बरसों लग जाएंगे, अगर किसी चीज को अगर आपको बनाना है तो। मगर किसी चीज को अगर आपको तोड़ना है, सिर्फ 1 सेकंड में आप तोड़ सकते हो, ठीक है। तोड़ने के ऊपर नहीं विश्वास करना जिंदगी में, बनाने के ऊपर विश्वास करना। रिलेशनशिप्स बनाना बहुत मुश्किल है, मगर तोड़ना बहुत आसान है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसको घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से से कहा, हाँ आप मेरे को समझ में पाया, अगर इन लोग को घर से निकालना है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये गौरैया मेरे घर में ना आए, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इनका घर तोड़ दूंगा। और घोंसले को तोड़ना तो बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। उनके उसका जो घोंसला था ना, गौरैया का घोंसला, उसमें से बहुत सारे तिनके होते हैं ना, स्ट्रॉस होते हैं ना, कोई बहुत सारे स्ट्रॉस नीचे लटक रहे थे घोंसले के। ओके, गौरैया ने सजावट के लिए एक झालर भी टांग रखी थी। उन स्ट्रॉस को देखकर कैसा लग रहा था कि गौरैया ने अपने घर को सजाने के लिए क्या किया, स्ट्रॉस को नीचे टांग दिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था, घोंसले को देखकर। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। उन्होंने क्या किया, लाठी को घोंसले के ऊपर रखा, उसको धीरे धीरे खींचने लगे। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। घोंसले में से जो तिनके थे बच्चों, धीरे धीरे फरफराकर नीचे गिरने लगे। चलो दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। अब माँ ये सब देख रही थी, माँ को पसंद नहीं था शायद, इसलिए माँ हंस रही थी। चलो ठीक है, दो तिनके तो निकल गए, अब 1000 तिनके भी निकल जाएंगे। तो तिनके का मतलब स्ट्रॉस। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। तभी मैंने क्या किया, बच्चा है जो उनका बेटा है ना, अम्मा और पिताजी का बेटा, उसने बाहर देखा। और बाहर उसने देखकर उसने क्या देखा कि दोनों गौरैया वहां पर बैठी हुई हैं, मगर दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। अब दोनों उदास थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी, अब वे चहक भी नहीं रही थी। ओके, अब वो कोई आवाज नहीं कर रही थी, कौन,
1: गौरैया।
0: अब जिसका घर टूटने वाला हो, अब क्या वो गाना गाएंगी,
1: नहीं,
0: वो क्या चहचहाएंगी,
1: नहीं,
0: नहीं। तो उन्हें मालूम चल गया अब हमारा घर टूटने वाला है। ओके, इसलिए वो दोनों गौरैया बिचारी चुपचाप दीवार पर बैठी हुई थी। ओके, अपने घर को टूटते हुए देख रही थी, मगर अब वो उदास थी। पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। अब पिताजी ने क्या किया, लाठी का सिरा घोंसले के ऊपर रखा और लाठी को धीरे धीरे घुमाने लगे। उनके घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। जब वो लाठी को घुमाने लगी, तो जो स्ट्रॉस है ना, जो तिनके हैं, लाठी के ऊपर रोल होने लगे, लाठी के ऊपर लिपटने लगे। लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। और धीरे धीरे वो घोंसला लाठी के अंदर अंदर नीचे नीचे आने लगा। फिर वे खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द मतलब आजू बाजू, तो उन्होंने उसको घोंसले को खींचा, तो जो स्ट्रॉस है उसके ऊपर लिपटने लगे, लाठी के दोनों साइड में लिपटने लगे। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलिया लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची ची ची ची। उन्होंने क्या देखा, घोंसले के अंदर बहुत सारे तिनके हैं, बहुत सारे कपड़ों के टुकड़े हैं। थिगलिया मतलब कपड़ों के टुकड़े, ये चिड़िया है ना, ये चिड़िया क्या करती है, बहुत सारे कपड़ों के टिकट, उनको जो भी मिलता है ना, जो भी सामान मिलता है, वो सब लेकर चली जाती हैं अपने घोंसले को सजाने के लिए। तो इसलिए उसमें बहुत सारी रुई भी है, उस घोंसले में रुई के फाहे हैं, बहुत सारे धागे हैं, कपड़ों के टुकड़े हैं। ओके, ये सारे कुछ लाठी के ऊपर लिपटने लगे। तभी अचानक दोनों गौरैया जोर से ची ची ची करने लगी। ओके, जोर से आवाज करने लगी, कौन,
1: गौरैया।
0: कब आवाज करने लगी,
1: जब उनको ये दिखा कि उनके घोंसले पर हमला
0: हो चुका है और जो उनके घर धीरे धीरे टूटने की कगार पर है। तो पिताजी ठिटक गए, पिताजी अचानक रुक गए, उन्होंने लाठी को घुमाना छोड़ दिया। ये क्या गौरैया लौट रही हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। हैं? तो ये गौरैया तो दीवार पर बैठी है, ये तो लौट कर नहीं आई, तो ये चीची की आवाज कौन कर रहा है? इसलिए सहसा अचानक पिताजी रुक गए, ये क्या हो रहा है, क्यों रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गौरैया कहाँ पर बैठी हुई हैं?
1: बाहर
0: बैठी हुई दीवार के ऊपर बैठी हुई हैं, जो उनकी जो दीवार है, कंपाउंड वॉल है, वहाँ पर बैठी हुई हैं। फिर तो ये चींची कौन करने लगा, ची ची ची, फिर आवाज आई, ची ची ची की आवाज फिर आई। मैंने ऊपर देखा, ओके, तो उस बच्चे ने फिर से ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्नी नन्नी गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। वो चिड़िया दोनों चिल्लाए जा रही हैं, चीची करे जा रही हैं। पिताजी के हाथ में लो लाठी अभी भी है और उस लाठी के ऊपर जो तिनके लिपट गए थे, वो तिनके भी अभी भी वहीं पर हैं। पर वो नन्नी नन्नी गौरैया अभी भी नीचे झाके जा रही।

0: थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? ओके, तो वो छोटी छोटी गौरैया नीचे देख रही थी और पिताजी अब एकदम आश्चर्यचकित। ओके, पिताजी को बहुत हैरानी हो रही थी कि इतनी जल्दी अंडे भी दे दिए और इतनी जल्दी उन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। तो वो चीची करके क्या कर रही थी, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। और जो छोटी छोटी गौरैया अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, देखो हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आ गए, अब बताओ हमारे माँ बाप कहाँ हैं, है ना? समझने वाले समझ सकते हैं। पिताजी को समझ में आ गया। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। पिताजी एकदम आश्चर्यचकित। कौन आश्चर्यचकित कौन है?
1: पिताजी।
0: पिताजी क्यों आश्चर्यचकित हो गए मुस्कान?
1: क्योंकि उन्होंने देखा कि वो घोंसले में बच्चे आ गए हैं।
0: हाँ, उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी अंडे आ गए और इतनी जल्दी अंडे में से बच्चे भी निकल गए। इसलिए वो अवाक हो गए। अवाक मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज होना। ओके, आश्चर्यचकित से कोई आप वाक्य बना सकते हो, बोलो।
1: पिताजी ने जब गोरैयों के बच्चे देखे तो वो आश्चर्यचकित हो गए।
0: यस, गौरैयों के बच्चों को देखकर पिताजी आश्चर्यचकित हो गए। बहुत अच्छे, तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है। अब पिताजी के हाथ में जो लाठी है वो घोंसले के ऊपर नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे हैं, बच्चों को कोई नहीं मार सकता, है ना? क्योंकि वो भी माँ बाप है ना? इसलिए उन्होंने लाठी ली और लाठी लेकर एक जगह रख दी। किसने?
1: पिताजी।
0: पिताजी। और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। और चुपचाप कहाँ पर आकर बैठ गए?
1: कुर्सी पर।
0: पर। क्यों बैठ गए?
1: क्योंकि अब वो घोंसले को कुछ नहीं कर सकते।
0: हाँ, क्यों? घोंसले को कुछ नहीं कर
1: क्योंकि
0: सकते।
1: उसमें बच्चे हैं।
0: हाँ, इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे को खोल दिया। माँ अभी तक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई थी। माँ ने देख लिया कि बच्चे आ चुके हैं, तो माँ कुर्सी पर से उठी और उन्होंने सभी दरवाजों को खोल दिया, सभी खिड़कियों को खोल दिया। क्यों?
1: ताकि उनके माँ बाप अंदर आ सके।
0: हाँ, ताकि जो छोटी गौरैया है ना, नन्ही चिड़िया भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। वो जो नन्ही नन्ही गौरैया थी ना, वो
1: हाँ।
0: अभी अभी बाहर आए हैं, तो अभी अभी बाहर आए तो उसका मतलब उन्हें भूख लगी है, उन्हें प्यास लगी है, चिल्ला चिल्ला कर अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उठकर अंदर आ गए और ची ची करते हुए उनसे जा मिले। माँ ने क्या किया था? माँ ने
1: खोल
0: खिड़की
1: दी।
0: खोल दी, तो दो गौरैया जल्दी से अंदर आई और वो अपने अंदर आकर वो अपने बच्चों से मिली और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी। चुग्गा मतलब खाना, तो वो खाना लेकर आई थी ना अपने बच्चों
1: हाँ।
0: के लिए, अपने बच्चों की चोंच में डालने लगी। माँ बाप अपने बच्चों को खाना खिलाने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। मैं और माँ और पिताजी उन गौरैयों को और उन गौरैयों के बच्चे को सिर्फ देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था और कमरा फिर से नॉइजी होने लगा था, मगर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। पर अब पिताजी ने क्या किया? अब पिताजी ने लाठी लेकर उनके ऊपर हमला नहीं किया, बस उनकी तरफ देखते रहे और मुस्कुराते रहे। ठीक है बच्चों, ये
1: हाँ
0: थी
1: ठीक है।
0: कहानी किसके द्वारा लिखी गई? कितनी
1: भीष्म साहनी।
0: अच्छी कहानी थी, पसंद आई आप लोग को?
1: हाँ बहुत पसंद है।
0: बहुत पसंद आई।
1: हाँ
0: ओके, चल अब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है?
1: ठीक है।
0: पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है, क्यों?
1: क्योंकि वो घर में अलग अलग तरह के जानवर थे।
0: जानवर थे, और वह जानवर क्या करते थे बच्चों? जानवर आवाज करते थे, राइट?
1: हाँ
0: तो कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? तन्मया।
1: कोई और ही है
0: कौन?
1: वहां पर रहने वाले
0: मैं,
1: जीव जंतु।
0: वहां पर रहने वाले। और तो वहां पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, बोलो अब मुस्कान, बोलो।
1: अलग अलग तरह की पक्षियां रहते हैं, फिर एक बिल्ली है
0: हाँ
1: और 20 चूहे।
0: हाँ 20 चूहे हैं। और इनके आने के बाद कौन आया?
1: इनके आने के बाद गोरे
0: गौरैया। गौरैया कितनी थी?
1: दो गोरे
0: दो गौरैया। बहुत अच्छे आप। तो इसका मतलब इसीलिए लेखक ने पिताजी के माध्यम से क्या कहा कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो बहुत सारे लोगों का है ना? ठीक है, अब एक और। गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी, उनके एक्शंस कैसे थे? माँ का एक्शन क्या था गौरैयों के प्रति? मुस्कान बोलो।
1: माँ को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी।
0: दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। ओके, पिताजी का उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी?
1: पिताजी बार बार शोर से परेशान हो गए थे और गोरैयों को बाहर निकालना चाहते थे।
0: ओके, तो आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हो। अगला सवाल। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी, इससे क्या पता चलता है?
1: कि माँ को पता था कि वो गोरैयों को कितना बाहर करे तो भी वो बाहर नहीं जाएंगे।
0: वो अंदर आएंगी। क्यों? माँ को कैसे पता चल गया? माँ को
1: क्योंकि
0: पता चल गया कि अब गौरैयों ने क्या किया होगा, गौरैयों ने
1: अंडा दे दिया
0: अंडे
1: होगा।
0: दे दिए होंगे, और अंडों से बच्चे निकलना स्वाभाविक है, जल्दी निकल जाएंगे। अच्छा, तो आपको ये लेसन अच्छा लगा?
1: हाँ अच्छा
0: आप
1: लगा।
0: इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगा? आपको किसी प्रकार का संदेश मिला? तन्मय,

0: ഇനി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ വാർത്തകൾ.
1: ഇയം ആകാശവാണി സംപ്രതി വാർത്താഹ ശ്രൂയന്താം പ്രവാചിക നിധി ഝാഹ. आदौ मुख्याः वार्ताः. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय कठोर दण्डस्य विधानाय च एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बलारी गुंतकल रेल परियोजनायै अनुमोदितं चतुष्षष्ट्यधिक द्वादशशत कोटि परिमितं द्रव्यम्. अपरत्र अंगीकृता त्रिरसायनोद्यान संवलिता भव्य रसायन परियोजना. केन्द्रीय मंत्रिभिः सीजेपी प्रतिनिधिमंडलेन सह नवदिल्ल्यां संपादितम् उपवेशनम्. श्वस्तावत् पुनः प्रवर्तयिष्यते द्विपक्षीय वार्ताक्रमः. नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणं समाश्रित्य संसदि अद्यापि अनुवृत्तः कोलाहलः. प्रतिपक्षस्य विरोधोद्घोषेण सोमवासर पर्यन्तम् अपवारितं संसदः कार्यजातम्. पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य अथ मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्रसंघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन प्रकटीकृतः तीव्रः खेदः. अपि च विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः प्रागुपान्त्य चक्रं विजित्य उपान्त्य चक्रं प्राविशत्. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय सहैव कठोर दण्डस्य विधानाय एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता. संसदि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अस्य प्रारूप विधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल आर्थिक कार्य समित्या कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्ययोः मध्ये स्थितस्य बल्लारी गुंतकल रेल खंडस्य रेल पथ पंक्तेः निर्माण प्रस्तावाय स्वीकृतिः प्रख्यापिता. अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां

0: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഇനി 10:30 കേൾക്കാം. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലും തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും വാർത്തകൾ.
1: പരേഷാനിയോ സേ ഘിരേ ഹൈ മൻ ഭാരി ഹൈ ഓർ കോയി റാസ്താ നസർ നഹി ആ റഹാ യാദ് രഖേ സമാധാൻ ആപ്കേ പാസ് ഹൈ ടെലിമാനസ് കേ നിശുൽക് നമ്പർ 14416 പർ കോൾ കരേ കഹീ സേ ഭീ കഭീ ഭീ 24 ഘണ്ടേ യേ സുവിധാ ഉപലബ്ധ ഹൈ യഹാ ആപ്കീ ബാത് സുനി ജാതി ഹൈ സംജീ ജാതി ഹൈ ഓർ ആപ്കോ സഹീ ദിശാ ദീ ജാതി ഹൈ ആപ് അകേലേ നഹി ഹൈ മദദ് ബസ് ഏക് കോൾ ദൂർ ഹൈ.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त. पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी. गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित. चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता. और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई. अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी. संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है. श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है.
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं. हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए. और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा. अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं. हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए.
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है. साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही. उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया.
4: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से. मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए. उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से

0: उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
3: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।